0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक, संगीत लहर।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: यो हो संगीत लहर, सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉन स्टॉप म्यूजिकल ब्रेक, संगीत लहर।
1: बुलाना बुलाना, चल दिमाग तू ही बुला। अरे हाँ, बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनेगा। चल बुला, चल बुला। ना बाबा ना, लो मैंने नहीं बुलाती।
2: हाँ, तेरी तो जरूर सुनेगा।
1: अरे बुलाना। अच्छा बाबा, बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।

0: टाइम्स एफएम 90.6
1: यो हो सुगम श्रृंखला, उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा सुगम श्रृंखला।

0: टाइम्स एफएम 90.6
1: यो हो सुगम श्रृंखला, उत्कृष्ट सुगम गीतहरुको यात्रा सुगम श्रृंखला।

0: तीन महिना
1: प्रकृति
2: के तपाईँ
3: म पत्थर
4: खुशी छु
5: टाइम्स एफएम
4: नजिक
2: के तपाईँका
6: टाइम्स एफ
4: भूत भूल होते
1: प्रकृति
4: मेरो भन
5: मनवित

0: टाइम्स एफएम 90.6 मा सुन्दै हुनुहुन्छ ऑल टाइम हिट्स हिंदी फिल्म का गीतहरु।
1: मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर।
2: वो इंग्लिश।

0: भूल गए
1: जान मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम